0: Breaker Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, all protected.
3: Bollywood's biggest 90s songs.

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties to Buy has something for everyone.
2: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place. 11, 11.
2: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
4: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
5: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 01163325100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: ये है
1: Like our radio.
2: We're finally going home for the wedding.
3: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
2: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
3: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
2: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
3: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
2: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
4: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे Grand.
1: Like a radio.
6: Subscribe to the Leica Radio YouTube channel by searching Leica Radio UK.

मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

जात जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कछ

0: Mica Radio.
1: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन कनिश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99।
2: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज़ 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
3: जिंदगी बर्बाद हो गई है।
4: Ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get

0: हमारे क्लासिक यस किशोर कुमार नाशा भोसले एंड द वर्कर्स. हेलो हेलो, क्या हाल है? ठीक ठाक है. आई नो ऑनेस्टली आई एम नॉट गोना लाई टू यू, आई हैव नॉट हैड माय कैपुचिनो दिस मॉर्निंग. द मशीन डिसाइडेड टू पैक अप टुडे. डॉनी ब्रस्को एंड आई ऑर्डर्ड समथिंग, इट्स नॉट कम. अपेरेंटली देयर इज नो ड्राइवर अवेलेबल. लाइक वी जस्ट वी आर डिप्राइव्ड एट द मोमेंट ऑफ एनी टी, कॉफी, एनी ब्रेकफास्ट एट दिस प्रिसाइज मोमेंट. इट्स लाइक व्हाई एंड यू नो द थिंग इज दिस मॉर्निंग, राइट, इट वाज पोरिंग डाउन विद रेन, इट स्टिल इज व्हेन कमिंग हियर. एंड आई वाज लाइक द फर्स्ट thing I said to Donnie was, I need my cappuccino. That's the only thing that's going to keep me awake right now. And because I've not had it, I just feel like I do. And then I put this song on, hello hello kya hal hai, this is my hal right now. It's 7:48. Good morning.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is trading at £104.58 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 2.

0: Odisha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
4: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
5: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
6: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
7: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
8: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
9: Four beers, please, garçon!
8: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
10: Like a goal. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
11: Artist of the week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: पहले लता जी की आवाज में और उसके बाद रफी साहब की आवाज में आपने सुना गीत फिल्म साजन से। ये पुरानी साजन भाई, शायद मनोज कुमार वाली।
1: साजन साजन पुकारूं,
0: अब पुकारना बंद कीजिए क्योंकि भाई इस समाचारों का समय नजदीक है। अगेन भाई, पहले तो धन्यवाद दे काजल को, आज तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रुक गई मेरे लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत सभी श्रोताओं का। दिस इज रवि शर्मा अंटिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून विद मनोरंजन प्रोग्राम। और अब जबकि ब्रिटिश घड़ियों में आज मंगलवार वर्ष 2026 की सितंबर महीने की 8 तारीख के समय में 10:28 हुआ चाहते हैं, आइए देखते हैं क्या है आज के प्रमुख समाचारों में।
2: Brought to you by Derry Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
0: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। ट्रंप ने अमेरिका में कनाडाई बॉम्बरियर विमान की बिक्री रोकने की धमकी दी है, हवाई जहाज की बिक्री रोकने की धमकी दी है। सत्यनिकेतन हादसा जो दिल्ली में हुआ, वो जो बिल्डिंग गिरी उसके मालिक को पत्नी और बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 दिन की जो है न्यायिक हिरासत में उन्हें रखा जा रहा है। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फटने से 3,000 फ्लाइट्स मुतासिर हुई हैं, 3.5 लाख लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। और दिल्ली की अदालत ने स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। और वही हाईकोर्ट का आदेश एक महिला को जबरदस्ती बांग्लादेश भेजने के कारण उसे वापस लाने का आदेश दिया हाई कोर्ट ने। असम सरकार उसे 2 लाख रुपए भी देगी और उसे वापस ला करके असम में बसाएगी। विस्तार से खबरें। ईरान की अमेरिका को नई वार्निंग, कह रहे हैं कि हमने अपनी सैन्य रणनीति बदल ली, अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी बदल ली है। ईरान ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा है कि उसने अपनी फौजी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। यह दावा ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने किया है। मोहसिन रजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हाल के दिनों में ईरान की नई मिसाइलों से वाशिंगटन को साफ चेतावनी मिल गई है। आर्थिक युद्ध यानी माली युद्ध जो फाइनेंशियल जो वार है, उसका जवाब फारस की खाड़ी में समुद्री रास्तों को रोक कर और नाकाबंदी करके दिया जाएगा। हाईकोर्ट का आदेश, मुस्लिम महिला को जबरन बांग्लादेश भेजने के मामले में असम सरकार अब 2 लाख रुपए हर्जाना देगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को भारत से बांग्लादेश में एक बंगाली बोलने वाली बंगाली भाषी मुस्लिम महिला को पुशबैक के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये पहली बार है जब किसी राज्य सरकार को भारत से बांग्लादेश में किसी व्यक्ति को भेजने में निर्वासन नियमों का उल्लंघन करने के लिए अदालती खर्च या मुआवजा देने के लिए कहा गया है। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए शी जिनपिंग भारत आएंगे या नहीं, चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, पोजीशन क्लियर नहीं है। चीन ने मंगलवार को शी जिनपिंग के यानी आज दिन शी जिनपिंग के सम्मेलन में हिस्सा लेने की संभावना पर कोई साफ जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मानहानि वाले मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा चल रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इससे जुड़े मामले में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की याचिका यानी एप्लीकेशन खारिज कर दी है। पिछड़ी सोच वाले पुरुषों को धर्म का ठेकेदार मत बनने दीजिए, एफिल टावर मामले में अभिजीत दीपके ने एक ही बयान दिया है। फ्रांस की प्रसिद्ध एफिल टावर में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS से जुड़े करीब 100 लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल के दौरे के बाद वहां तैनात महिला कर्मचारियों को हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें भाई, इस संस्था के जो सन्यासी होते हैं वो महिलाओं का सामना नहीं करते, महिलाओं से हटके रहते हैं, तो ऐसा वहीं ये सिचुएशन खड़ी हो गई है। इस मामले पर रिएक्ट करते हुए कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि पिछड़ी सोच वाले पुरुषों को धर्म का ठेकेदार मत बनने दीजिए। जो पुरुष धर्म और आस्था का इस्तेमाल महिलाओं पर पाबंदी लगाने, नैतिकता थोपने और दूसरों की आज़ादी छीनने के लिए करते हैं, वे धर्म और देश दोनों के लिए सिर्फ शर्मिंदगी का कारण बनते हैं। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दावा किया है कि ईरान समर्थित हूती लड़ाकों की ओर से सऊदी अरब पर किए गए हमलों में कम 73 लोग जख्मी हुए हैं। यमन के सबसे अधिक आबादी वाले इलाके और देश के उत्तरी भाग के ज्यादातर हिस्सों पर कंट्रोल रखने वाले हूती विद्रोहियों ने जुलाई में सऊदी अरब के खिलाफ 9 सैनिक नाकाबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद उसने सऊदी अरब पर अपने हमले शुरू कर दिए थे। उसने रेड सी में समुद्री जहाजों को भी निशाना बनाया था। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन डरपोक जज कहलाना पसंद नहीं करूंगा। ये सेंटेंस, ये टिप्पणी मुजफ्फरनगर के अपार जिला एवं सेशन जज रवि कुमार दिवाकर ने उस फैसले में की है जिसमें उन्होंने 8 साल पुराने एक जघन्य हत्या मामले में दोषी को सजाए मौत सुनाई है। जज रवि कुमार दिवाकर ने शाहपुर शाहजादी हत्याकांड में उनके पति को फांसी की सजा सुनाते हुए अपने फैसले में ये बात लिखी। जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में एक गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के माफिया और गैंगस्टर उनसे संपर्क करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनका फैसला जो है वो अडग रहेगा। धीरेंद्र शास्त्री के बारे में पश्चिम बंगाल के बीजेपी चीफ का एक बयान आया है। आप जानते हैं धीरेंद्र शास्त्री, बागेश्वर बाबा के नाम से लोकप्रिय धीरेंद्र कृष्ण गर्ग उर्फ धीरेंद्र शास्त्री की ओर से दुर्गा पूजा के मौके पर नॉनवेज न खाने की अपील के बाद पश्चिम बंगाल के बीजेपी चीफ सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि वो संत आदमी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। संत आदमी के बारे में ज्यादा कुछ हम नहीं बोल सकते, उनकी कथा पूरे देश में मशहूर है। लाखों की तादाद में लोग हावड़ा ब्रिज पर उन्हें सुनने गए थे। कोई भी व्यक्ति शाकाहार का समर्थन कर सकता है, इससे वो अपराध ही नहीं हो जाता। हालांकि अगर कोई किसी को पाखंडी जैसे शब्द से एड्रेस करेगा तो हम इसका समर्थन नहीं करते। पाकिस्तान सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल की कीमतें वहां प्रति लीटर 12.90 रुपए हो गई हैं। इसमें 3.72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं। ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान में तेल की सप्लाई में दिक्कतें आई हैं। पाकिस्तान का अधिकतर तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए आता है, लेकिन इस रास्ते पर आजकल आवाजाही बंद होने से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत बहुत बढ़ गई है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से 3,000 के करीब फ्लाइट्स मुतासिर हुई हैं। हवाई अड्डों का संचालन दूसरे दिन भी बंद रहने से 3,40,000 से भी ज्यादा मुसाफिर फंसे हुए हैं। और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की हवाई कंपनी बॉमरडियर को चेतावनी दी है कि अगर वो अमेरिका में अपने हवाई जहाज बेचना चाहती है तो उसे इन्हें अमेरिका में ही बनाना पड़ेगा। ट्रंप ने कल सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कोई और बिक्री अमीन हवाई जहाजों की आनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें हमारा बाजार चाहिए तो उन्हें प्रोडक्शन का काम यहीं करना होगा। अमेरिका को पैसों की तिजोरी समझना बंद करना होगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
4: This is Leica Radio. Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: साउथहॉल ट्रैवल वालों की भाई वो बात फिर से हम दोहराना चाहते हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं कि दुबई डील्स के लिए बड़े जाने माने हैं साउथहॉल ट्रैवल्स, और वो कहते हैं कि कांटेक्ट कीजिए हमसे। हमारा फोन नंबर है 02085748410। साउथहॉल ट्रैवल दुबई के लिए होली डील्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं, एंड दे आर एट ऑल प्रोटेक्टेड, डोंट फॉरगेट दैट।
2: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
5: Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.

0: किसमें कितना है दम, आशा जी की आवाज और साथ में सुर मिला रही थी आरडी बर्मन और किशोर कुमार। भाई ये तो बताने की जरूरत नहीं कि आज आशा जी का जन्मदिन है, आज वो दुनिया में होती है। तो अपना कौन सा जन्मदिन मना रही होती है हिसाब लगा लीजिए, 1933 में उनका जन्म हुआ था। वर्सटाइल वॉइस, भाई एक ऐसी आवाज जिसमें कई रंग थे, कई क्या क्या अभिव्यक्तियां थी छुपी हुई।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com.
3: ये है लाइका रेडियो।
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। कनीश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू। और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
5: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE5 4UN।
6: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट। क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एंबिशियस 11-11 इनिशिएटिव एमिंग टू कंप्लीट 11 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स इन जस्ट 11 मंथ्स फीचरिंग व्यूज, ओएसिस, ओशंस, एलीट फैशंस एंड स्पोर्ट्स। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू, सो व्हाई वेट, बी पार्ट ऑफ दुबईस ग्रोथ स्टोरी। Call the Danube Properties Dubai London office today on 02039635757 to arrange your meeting.
7: I happen to happy valley feeling like a Diwali.
6: It's back and it's bigger.
8: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
6: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
8: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit DiwaliShoppingFestival.com.

0: आज नाउ
1: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
2: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय।
3: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14-night कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस। खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर। सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
4: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
5: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
6: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
5: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
6: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
5: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
9: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 एम टू 1 पीएम ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
10: लौट आइए संगीत की ओर और सुनिए वो गीत जो भाई लोग कहते हैं कि आशा जी के अलावा कोई और नहीं गा सकता था। आशा भोसले जिनका आज जन्मदिन है, याद तो करेंगे उन्हें श्रद्धा से, पर ये गीत बरसों पहले वह रिकॉर्ड हुआ था शिकार फिल्म के लिए, धर्मेंद्र आशा पारेख की फिल्म। संगीत रहा होगा मेरा ख्याल शंकर जयकिशन का, लेकिन साहब आवाज कंठ कोकिला आशा भोसले।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा और मैं आपकी सेवा में बहनों भाइयों दोपहर बाद एक बजे तक हाजिर हूँ। लेकिन इस समय जबकि ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं, ये समय है चिंतन का, तो पेश करता हूँ थॉट फॉर द डे, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें भिजवाया है सुधीर शर्मा ने। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, ई लिंक से भेजा आपने और आप बता रहे हैं कि आप आर्य समाज लंदन के रेजिडेंट प्रीस्ट हैं, स्वागत है भाई। ये बता दें आपको कि आजकल जो चिंतन आप सुन रहे हैं दैट इज स्पॉन्सर्ड बाई आर्य समाज लंदन, और वो एक सूचना भी साथ दे रहे हैं कि विश्व में दुनिया में शांति और सद्भाव की ज्योति जगाने के लिए आर्य समाज लंदन आपको विश्व शांति महायज्ञ में आमंत्रित करते हैं। यानी दुनिया भर में अमन चैन की स्थापना के लिए, युद्धों को रुकवाने के लिए, प्रेम और भाईचारा बढ़ाने के लिए वो एक अनुष्ठान कर रहे हैं और उसमें भाई वो आपको आमंत्रित करते हैं, कहते हैं आइए वैदिक प्रार्थना, आध्यात्मिक चिंतन और एकता के इस विशेष अवसर पर परिवार और मित्रों सहित तशरीफ लाइए। कब हो रहा है ये, कहां हो रहा है तो नोट कीजिए, रविवार यानी संडे 13 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये अनुष्ठान चलेगा। आर्य समाज लंदन, 69 आर्गाइल रोड, W13 0LY, ये है भाई उनका एड्रेस, फिर बता दूं, आर्य समाज लंदन, 69 आर्गाइल रोड, लंदन W13 में ये आयोजन किया जा रहा है। अब लौट आइए आज के चिंतन की ओर। सुधीर जी लिखते हैं कि एक व्यक्ति आचार्य के पास गया और कहने लगा, मुझे अपना शिष्य बना दो, मैं अध्यात्म की दुनिया में उतरना चाहता हूं, मैं मोह माया से छुटकारा चाहता हूं, विषय विकारों से दूर हटकर उस परम पिता परमात्मा की साधना में लीन रहना चाहता हूं। आचार्य ने कहा कि पहले मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी, क्या तुम सचमुच अधिकारी हो ज्ञान के? ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको विचारक बनना होता है। जो व्यक्ति विचार करे किसी भी काम से पहले, घर छोड़कर आने और भाई मेरा शिष्य बन जाने से कल्याण नहीं होगा। अगर आप विचार करना शुरू करें, वाणी कहती है कि ना सुख है विच गृहस्थ दे ते ना कुछ शड गया, सुख है विच विचार दे संता शरण गया। आप विचार करें हर बात पर, भाई उसी का नाम तो चिंतन है, चिंतन करें। जो आप कर रहे हैं क्या वो समाज के लिए कल्याणकारी है, विश्व के लिए कल्याणकारी है और अपने आप खुद आपके लिए मंगलमय है? शिष्य ने कहा, महाराज मैं तैयार हूं, आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले लीजिए, मैं ज्ञान का अधिकारी हूं। अच्छा ये बात है, तो आचार्य ने कहा, ये लो, ये एक मायावी कबूतर है मेरे पास, इसे संभालो और किसी ऐसे एकांत स्थान पर ले जाके इसकी गर्दन मरोड़ दो, मार डालो इसे, मैं जिंदा कर लूंगा लेकिन मेक श्योर किसी को पता ना लगे, कोई ना देखे, ये ध्यान रखना, अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें शिष्य बना लूंगा, दिव्य दृष्टि दूंगा। शिष्य ने कहा, ठीक है ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वो कबूतर लेके चला तो पंख फड़फड़ाता कबूतर अब उसके हाथों में था, इधर उधर दूर नजदीक कहीं जाकर भाई, कभी घने जंगल की ओर गया तो कभी समंदर किनारे जहां कोई ना देखे, ऊपर से कोई दूसरा परिंदा भी ना देखे। फिर वो एक गुफा में गया, आसपास कोई नहीं था। उसने कहा, गुरुजी ने कहा था किसी को पता ना लगे, यहां तो कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। उसने कबूतर की गर्दन को पकड़ा, मरोड़ने वाला था तो एकदम रुक गया, विचार किया, जो मैं करने जा रहा हूं गुरुजी ने कहा था किसी को पता ना लगे, कोई ना देखे, पर ये कबूतर उसकी ओर देख रहा था, गुटर गुटर आंखें तरेर कर घुमाकर, ये तो गड़बड़ हो जाती। गुरुजी ने कहा था
कोई ना देखे, किसी को पता ना लगे। उसने क्या किया, कबूतर की आंखों पर पट्टी बांधी ताकि वो ना देखे, और फिर जब वो गर्दन मरोड़ने लगा तो फिर विचार हुआ, चिंतन किया। गुरुजी ने कहा था कोई ना देखे, कबूतर की आंखों पर तो मैंने पट्टी बांधी, पर मैं खुद तो देख रहा हूं, अपने आप से भागकर कहां जाऊं, अपनी आंखें बंद कर लूं। पर गुरुजी ने कहा था किसी को पता ना लगे, कबूतर को पता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप से भागकर कहां जाओगे। बहनों भाइयों, अपना अच्छा बुरा, अपना सत्कर्म या दुष्कर्म आप अपने से छुपाकर कैसे कर सकते हो, आपको पता होता है। आपके भीतर जो परमात्मा निवास करता है, आपके माध्यम से वो देख रहा है, जान रहा है, और इतना ही नहीं, वो आपको रोकता भी है। अंदर से आवाज आती है जिसको आप अपनी आत्मा की आवाज कह सकते हैं। हर बुरा काम करने से वो आवाज आपको रोकती है, पर आप उसे अनसुना करके फिर अपराध करते हैं। शिष्य ने विचार किया, चिंतन किया और मान लिया कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई ना देखे, कोई ना जाने, किसी को पता ना चले। भाई मुझे तो पता चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मैं इसे कर रहा हूं। कबूतर को वापस लेके आचार्य के पास गया। महाराज, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अपने किए कर्मों को मैं इतना छुपा लूं कि किसी को पता ना चले। मुझे पता है, कोई ना देखे, मैं देख रहा हूं। आचार्य ने कहा, मैं नहीं, आपके भीतर जो परमात्मा है वो देख रहा है। आंखें देखती हैं दुनिया की चीजें, पर आंखों के देखने को भी कोई देखता है। जब आप कहते हैं ना, मुझे आंखों से कम दिखाई दे रहा है, ये किसने देखा? जब आप कहते हैं मेरी आंख दुख रही है, ये किसने देखा? बहनों भाइयों, जिसे आप मन कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, वो सब जानता है, और वो उस परम पिता परमात्मा का अंश है हम सबके भीतर। वो ईश्वर सब देखता है, सब जानता है। उससे छुपाकर आप कोई कर्म नहीं कर सकते हैं। झांकिए और उससे अनुमति लीजिए। एक एक कर्म का हिसाब किताब देख रहा है वो, लिख रहा है वो, जानता है वो।

0: कोई कर्म आप अपने आप से छुपा नहीं सकते क्योंकि आप कर रहे हैं, और ये देखने वाली शक्ति जो है वही परमात्मा की शक्ति है, वो सब देखता है, वो सब जानता है। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें सुधीर शर्मा जी ने भिजवाया ईलिंग से, और बहनों भाइयों चिंतन जो है वो स्पॉन्सर है आर्य समाज ईलिंग की ओर से। याद दिला रहे हैं कि 13 तारीख को उनके यहाँ विश्व शांति के लिए यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, और आप सबको वो आमंत्रित कर रहे हैं। विश्व में शांति की स्थापना के लिए इस यज्ञ में आप भाग ले सकते हैं। एड्रेस मैं बता दूं और तारीख 13 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आर्य समाज लंदन 69 आर्गाइल रोड W13LY में ये आयोजन होगा। बुकिंग के लिए आप उनका फोन नंबर मिला सकते हैं 02089911732। संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 02089911732। याद दिला दें आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके के कम्पिटेटिव रेट्स नोट कीजिए भाई। एक पाउंड के बदले टुडे दे आर गिविंग 127.9 रुपीस एंड दैट्स द मैक्सिमम। 127.90 रुपए का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। कनिष आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 रुपीज से शुरू, और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
5: सिटी बॉन्ड ट्रेवल प्राउडली प्रेजेंट्स यात्रा टूर्स 2026।
6: डिस्कवर कैलाश मानसरोवर, चारधाम, अमरनाथ, श्रीलंका विद अयोध्या, अयोध्या विद काशी, द गोल्डन टेम्पल अमृतसर एंड मोर।
7: बुक बिफोर द 31st ऑफ अक्टूबर एंड गेट £150 ऑफ कैलाश और £100 ऑफ एनी अदर यात्रा टूर।
8: ऑल्सो एक्सप्लोर 2026 क्रूजेज
7: फ्रॉम अलास्का टू द कैरेबियन, द मेडिटेरेनियन, जापान एंड कोरिया। विजिट अस एट 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
2: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
9: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250 376.
10: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
11: Join legendary singer Kavita Krishnamurthy
10: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
11: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
10: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
12: Hey, mere, hum
2: One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: The wait is finally over.
13: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
12: Mirzapur is coming to the big screen.
14: Gaddi na to virasat se milti na siyasat.
12: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
15: Agar Kaleen bhaiya hai wo king of Mirzapur.
12: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
14: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. Dusra koi nahi khulega.
2: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
16: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
2: From King's Heath to Smethwick, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands, Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
17: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे जमाना हमारी इज्जत करे और जिसने अपने गुरु की माँ बाप की दुआ दे दी उसको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाता है।
2: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
18: Leica Radio.
2: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
19: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
20: सुनिए
21: कहिए कहिए
20: सुनिए सुनिए
21: कहिए कहिए ना।

0: और मेलोडी। और भाई ये जो धुन है यार, ये वो बीन वाला लहरा लगता है कि सांपों से जोड़ दिया गया है इसे, जबकि सब जानते हैं कि सांप के कान नहीं होते। फिर वो संगीत का मजा कैसे लेता है? हवा की तरंगे जो हिलती है ना भाई, किसी भी स्वर से, ध्वनि से आवाज जब निकलती है, तो आवाज से वायुमंडल में जो तरंगे पैदा होती उनसे वो उनको पढ़ लेता है सांप। उसे चक्षु श्रुवा भी कहते हैं, संस्कृत में इसका मतलब है आंखों से सुनने वाला। वो आंखों से ही, उसका मुंह उधर हो और आप उसके पीछे से गुजरेंगे तो वो एकदम जो है अपनी मुंडी पलटेगा, पीछे मुड़ के देखेगा, क्योंकि उसने देख लिया है उसके पीछे कोई है। हवाओं की तरंगों को पढ़ करके बहुत बारीक दृष्टि है उसकी, जो कानों का काम भी उसी से भाई वो चलाता है सांप। राइट, अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत फिल्म निगाहें से था, और इससे पहले जो गीत आपने सुना दैट वाज बातों बातों में फिल्म से लिया गया था। तो भाई बैक टू बैक संगीत सुनवाते हैं हम, चिंतन के बाद आपने सुना, एंजॉय किया। इसी बीच बहुत सारे संदेश आ गए हमारे स्क्रीन पर, और ये है चिंतन के विषय में। उल्लास टोरंटो से, जैस्मीन यहाँ से, जगदीश जी बुशी से, भरत गंगाराम जी, थैंक यू वेरी मच भाई, आप सब चिंतन के प्रशंसक हैं। और राधा गर्ग रेडिंग से, सुनीता शर्मा जी, सारा पटेल जी, नमस्कार, वाओ वेरी गुड चिंतन शर्मा जी, थैंक यू जी। सारा जी, पता लगा है कि वीकेंड पे आपका जन्मदिन था, तो वीकेंड पे भी छुट्टी नहीं करते क्या आप? वीकेंड पे भी पैदा हो जाते हैं, अब वीकडेज में पैदा होते तो हम आपको बधाई देते, अब बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहेंगे हम आपको, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। लेकिन आज भाई जन्मदिन मनाने वालों में कुछ और नाम भी हैं। देखिए, भूपेन हजारिका, बड़ा प्रतिष्ठित नाम है संगीत में, और संगीत में तो आशा जी का नाम भी बहुत ऊंचा है, उनका भी जन्मदिन पड़ता है आज, आशा भोसले का। गिरिराज सिंह पॉलिटिशियन हैं, ये भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। और क्रिकेट में शुभमन गिल, 1999 में जन्मे थे फाजिलका में, शुभमन, तो भाई वो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स। संत रामपाल, ये नाम हरियाणा का है, सतलोक करोथा से, बड़े कंट्रोवर्शियल संत रहे हैं वो, चर्चा में रहते हैं, और उनका भी आज जन्मदिन है। और भाई आज पुण्यतिथि यानी बरसी है शेख अब्दुल्ला की, 1982 में उनका इंतकाल हुआ था। और फिरोज गांधी, राहुल गांधी के दादा, श्रीमती इंदिरा गांधी के जो हैं शोहर, उनके पतिदेव, उनका निधन हुआ था 1960 में आज ही के दिन, यानी 8 सितंबर को। लेकिन साहब 8 सितंबर को अगर आपके घर परिवार में किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह या कोई और उत्सव है, तो हमारी ओर से बधाई स्वीकार कीजिए।
1: Like a radio. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Leica Extra podcast update.
3: भाई लाइका एक्स्ट्रा का जो पॉडकास्ट है, नया हमारा जो एपिसोड है 32, वो अब उपलब्ध है, उसे देखिए। और संगीत में अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप एंजॉय करेंगे। और भाई आप ये रेडियो सुन रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो संगीत में दिलचस्पी तो है ही है आपकी। तो मैं याद दिला दूं आपको कि भाई मैंने एक बहुत ही सुरीले गायक कलाकार को इंटरव्यू किया और वो इस एपिसोड में है। नाम है उनका मोहम्मद वकील। बड़े दिलचस्प इंसान है और साहब उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। तजुर्बा है, अनुभव है, स्वर है और ज्ञान है स्वर का। लेजेंडरी आर्टिस्ट जगजीत सिंह और जावेद अख्तर जैसे कलाकारों के साथ वो जुड़े रहे हैं। तो भाई ज़रूर देखिएगा हमारा ये एपिसोड 32 विद मोहम्मद वकील एंड रवि शर्मा। इट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
4: ये है
5: लाइका रेडियो।
4: 4 stars, 1 stage, 1 date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 p.m. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Maharaja Tours ke saath is November explore kijiye Singapore, Malaysia aur Thailand. Sentosa Island, Batu Caves, Genting Highlands, Bangkok ke floating markets aur beautiful temples. Phir Pattaya aur Coral Island ka maza. Fantastic. Mystical Far East from sirf £2,799 per person. Flights, 4-star hotels, Indian khana or amazing excursions. Sub included. Visit maharajatours.co.uk or call 07956 154 846.

0: Hello there. My name is Deep Raja, and I do the weekend the breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays, like a gold in London, the Midlands, and Manchester.
1: करेंसी रेट स्लैम फाई के मैं बता रहा हूँ भाई, अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं भी, तो नोट कीजिए, मैं उनकी रेट्स बता रहा हूँ। लम्फाई वाले दे रहे हैं एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.23 रुपीस, अफगानी 88.27, पाकिस्तानी रुपए 375.56, बांग्लादेशी टके 166.24, श्रीलंकन रुपए 444.04 और केनियन शिलिंग्स 175.06.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. Leica Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Sone ka bhav. Well, the gold is trading at the rate of 104.6 pounds.

0: सॉन्ग और भाई जिसको पसंद है इसे अपने नाम कर ले। बात यह है कि एक आवाज तो इसमें आशा जी की थी, दूसरी आवाज किसकी थी ना, लता जी की नहीं भाई, तीनों बहनों जो मतलब गाती रही हैं। वैसे तो मीना मंगेशकर भी थोड़ा बहुत गुनगुनाती रही पर वो इतना रोशनी में नहीं आई। तीसरी बहन इनकी एक जो गाने वाली है, लता जी, आशा जी और उषा जी। तो भाई इसमें आशा जी और उषा जी की आवाज़ें शामिल थी और ये गीत बहुत सारे श्रोताओं को पसंद आ गया। सुनी रे सजरिया साजन बिन तेरे, क्या अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। भाई इसी बीच कुछ संदेश आकर के चिपक गए हमारे स्क्रीन पर और खुश आपका मैसेज मिल गया है। किशोर पांड्या साहब आनंद पान वाले सुन रहे हैं, सराह रहे हैं और भाई हम जो भी गीत पसंद आए वो आपके लिए सुनवा रहे हैं, ले लीजिएगा। नैना शाह, आपका नाम है पर पैगाम नहीं है, आपने मिटा दिया है ये सोच के कि नाम तो लेते नहीं है मेरा। अरे आपका नाम तो हम प्रोग्राम के बाद भी लेते हैं। नैना जी, आप जो सुझाव देते हैं, जो गीत सुझाते हैं, हमें याद रहते हैं। और महेंद्र बजारिया साहब साउथ हैरो में, आपका संदेश मिल गया, थैंक यू वेरी मच, आपको चिंतन बहुत पसंद आया। और ग्रेट लता जी की आवाज़ में एक गीत सुनना चाहा आपने, नहीं सुन लिया है, धन्यवाद भेज रहे हैं, थैंक यू। विजय सटन में हमारे साथ जुड़े हैं, हंसा वोरा जी। कीर्ति, थैंक यू वेरी मच, कहती है आपकी शिष्या, ओह गॉड ब्लेस यू। और ये हरीश रोडा साहब, थैंक यू, आपको ये गीत पसंद आया, ये आप ही के लिए था। सुखी, सुखी ने लिखा है, मेरे नाम एक गाना ठोक दो। ठीक है जी, ठोक देते हैं, कहते कोई भी एक गाना मेरे नाम ठोक दो, थैंक यू। और हमारे पवन नेहरा साहब, ये हरियाणवी हैं और इन्होंने लिखा है कि मौसम के हिसाब से एक कप चाय और एक मट्ठी जैसा कोई गाना हो जाए, गर्मा गर्म चाय और मट्ठी जैसा गाना, बिल भेज दूंगा फिर मैं चाय का, गाना सुनवा के। थैंक यू चोई साहब, सुनते रहिएगा। और कौन है भाई ये, ज्योति और गिरीश साहब, आपका संदेश मिल गया है। और हमारे ये हैं कौन, वीरेंद्र चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपको चिंतन पसंद आया, चिंतन के साथ गाना आपको अच्छा लगा। अर्जन जी, फतेह पटेल, रंजन और स्लो वाली रानी, पम्मी स्लो वाले, निर्मला जी, हिना जी, रागनी जी, सारे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके बता रहे हैं कि भाई पैसे भारत भिजवाना चाहे तो रेट अच्छा चल रहा है। आज का रेट है 127.9 फॉर वन पाउंड, 127.90 रुपए। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई। Like a radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। कनिष आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू। और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN। लिस्टर ना लिटिल गरबा स्टार्स तैयार थे जाओ। KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशन प्राउडली प्रेजेंट्स किड्स गरबा 2026 विद लाइव फ्रॉम इंडिया सैटरडे 17 अक्टूबर बपोरे 1 to 4 एट अवंती फील्ड स्कूल लिस्टर। 1 to 10 वर्ष ना किड्स माटे एंट्री जस्ट 5 pounds। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट सोर्स और कॉल पीजल 07957477330। मस्ती म्यूजिक एंड फुल ऑन गरबा फन। रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220-plus destinations with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: The wait is finally over.
9: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
8: Mirzapur is coming to the big screen.
10: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
8: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
11: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
8: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
12: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. Dusra koi nahi khulega.
13: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
14: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
15: Ye hai Leica Gold

0: लागा
1: चुनरी। आध्यात्मिक गीत अब स्पिरिचुअल शब्दावली है, चुनरी में दाग लग गया है, छुपाऊं कैसे, बाबुल के घर जाऊं कैसे। अब ये रिदम एंजॉय कीजिए।

0: बड़े सॉन्ग भाई, हरि गोस्वामी के नाम करते हैं हम ये गीत क्योंकि वो इसे बहुत गुनगुनाते हैं और बिल्कुल मन्ना डे साहब के अंदाज में बिल्कुल टीटो कॉपी जो है उसकी गाते हैं वो हरि, ये गीत आपके नाम गया। और अब अगला गीत देखते हैं कौन अपने नाम करता है। आ रहा है आवाज आशा भोसले और किशोर कुमार की और सुनवा रहे हैं आपको
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: गाना नहीं है, दिल का नजराना है। स्वीकार कीजिए।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और साहब अब एक सूचना आप तक पहुंचा दें कि भाई द 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक होस्टेड बाय सलमान खान. द शो एयर्स एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर टीवी एंड जियो हॉटस्टार. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार इज स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलोंग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस. वहां से घर से रिपोर्ट. तो भाई ये सूचना आप तक पहुंचानी थी. और एक और सूचना आगे चल के देते हैं आपको.
0: ये है लाइका रेडियो.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
2: पेरिस में नए मंदिर की ओपनिंग हो गई है भाई. BAPS का मंदिर शानदार बनकर तैयार और वहां पर लोगों की वो कतार दर्शन करने के लिए. और वहां पर वो एक भारतीय संस्कृति का एक उत्सव चल रहा है. 6 तारीख को मंदिर की ओपनिंग हुई है और तब से लेकर साहब हर किसी का जी चाहता है. बहुत से लोग पहुंचे हैं दुनिया भर के कोने कोने से वहां इस मंदिर की ओपनिंग के अवसर पर. मन के अंदर दर्शन कर लो.

0: अब लोग पेरिस की यात्रा पर जाएंगे तो भाई सिर्फ एफिल टावर देखने नहीं, अब वहां पर एक और भारतीय संस्कृति का जागृत जीवंत भवन जो है वो मंदिर बनकर तैयार हो गया है, दर्शन करने जरूर विजिट करेंगे। मुझे ले चल मंदिर, कहते हैं मंदिर भी जाना तभी संभव होता है जब ऊपर वाले का इशारा होता है।
1: Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
0: साउथ ऑल ट्रेवल याद दिला रहे हैं भाई, दे आर नोन फॉर दुबई डील्स। अगर आप दुबई की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए उनसे। कॉन्टैक्ट साउथ ऑल ट्रेवल टुडे ऑन 0208-574-8410। साउथ ऑल ट्रेवल, दे आर एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 0208574-8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.

0: जावा शोले शोले शोले शोले मेरी जवानी बोले बोले बोले
1: रब्बा मैं की करा
0: जाने नहीं
1: कभी कोई घर का काम भी कर दिया करें की करा। एक लड़की को शिकायत करती है कि मेरा जो है वो नहीं चल रहा है कंप्यूटर, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, बताइए क्या करूं मैं। कहता है कुछ घर का ही काम कर लो।

ना ये जिद है ना कोई इसरार है, आपसे एक इल्तजा सरकार है। जहां जिगर सब हो मुबारक आपको, आपका बस दिल हमें दरकार है। मिलेगा संभाल के रखेंगे ना दो।

0: जाते ओ जरा जाते जाते।
1: और जाते जाते याद दिला दूं, बाली भाई तैयार हैं भाई, आज आशा भोसले जी का जन्मदिन है, बहुत कुछ सामग्री जुटा के लाए हैं, बातें करेंगे उनके विषय में। हमारी आपकी मुलाकात कल 10 बजे की खबरों के बाद, तब तक के लिए हैव अ सुपर्ब डे।

0: what can you say? The most versatile singer, if not in Bollywood, in the world, Asha Bhosle. You know, she performed an astonishing spectrum encompassing thousands of songs spanning over 20 languages, countless music genres and emotional moods. इन्होंने रिकॉर्ड भी ब्रेक किए. ऑफ कोर्स 12,000 गाने गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने डिक्लेयर किया इनके गाने. एंड व्हाइल द हिस्टोरियंस डू नॉट पिन डाउन अ सिंगल ऑफिशियल न्यूमेरिकल काउंट फॉर एवरी डिस्टिंक्ट मूड, हर करियर इज यूनिवर्सली सेलिब्रेटेड फॉर अ वर्चुअली limitless, I would say, range rather than a fixed deposit. Fixed deposit? Now digital ka zamana hai. To digital zamane mein, you can say ke ek virtual limitless range inhune dikhai. Koi fixed digital era nahi tha us zamane mein. मैं समझाता हूं आपको मैं क्या कहना चाहता हूं. क्लासिकल, इनके जॉनर्स देखो, पोर्ट्रेट, क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल, गजल्स एंड ठुमरीज, कैबरे, जैज, रॉक, पॉप, साइकेडेलिक, इमोशंस, दम मारो दम जैसा पॉप एंड साइकेडेलिक, एंड डिवोशनल एंड फोक. फिर इमोशनल मूड्स में देखो, प्लेफुल मूड, सोलफुल, मेलेंकोलिक, मेलेंकोलिक यानी कि हार्ट ब्रेकिंग और डीपली यर्निंग बैलेंस, रोमांटिक, यूफोरिक. गिनेस बुक ने जब 12,000 गाने इनके डिक्लेयर किए, शी सिमेंटेड हर स्टेटस एज अ सिंगर हु गेव वॉइस टू एवरी शेड ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड म्यूजिकल स्टाइल in Indian cinema history. I mean, Asha Bhosle ji ki gaane hum celebrate karte hain. Legendary Asha Bhosle, the versatility and timeless career across generations. Unmatched versatility. You know, unki iconic discography hum dekhe, to it transitioned seamlessly from high octane club bangers to deep sorrowful ghazals, chart busters, cabaret, jazz and dance. Maine sare gaane inke study kiye, fir maine socha ki inhone har heroine ke liye, har heroine to nahi, jitni bhi heroines ke liye inhone gaaye, wo main aapke samne pesh karna chahta hu, because that is what's important. वरना गाने तो सेम 12 महीने सुनाई देते हैं आपको. सो मैंने पहले तनुजा से शुरू किया, फिर सायरा बानू, आई मिलन की बेला, उसके बाद आएगी हेलन, उसके बाद साधना, फिर मधुबाला, ऑल द थ्री एम्स, मधुबाला, माला सिन्हा एंड मीना कुमारी. सेकेंड आवर में हम करेंगे काजोल, उर्मिला मटोंडकर, जीनत अमान, रेखा, जया बच्चन, जया भादुरी कहूं तो उस जमाने में ये सब हीरोइंस परवीन बाबी होंगी, आशा पारेख होंगी, करिश्मा कपूर भी होंगी, शशिकला भी होगी. सो लेट्स एंजॉय आशा भोसले जी. अगर मैं ये बोलने के लिए मैं 10 मिनट बिता दूं कि शी वॉज बॉर्न ऑन 8th of September 1933 इन सांगली एंड शी पास्ड अवे सैडली आई वुड से दिस ईयर इन अप्रैल, लेकिन ये सब बातें करने से बेटर है कि मंगेशकर फैमिली में हाउ मेनी सिस्टर्स एंड फादर, मदर, ये सब तो आपको मालूम है. So let's enjoy her songs. 93rd बर्थ एनिवर्सरी। यस, आज कितने बड़े पैमाने से शी वुड हैव बीन सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। आई हैव गॉट फॉन्ड मेमोरीज वर्किंग विद हर, आई हैव गॉट फॉन्ड मेमोरीज ऑफ इन लंदन, आई हैव गॉट फॉन्ड मेमोरीज इन मुंबई विद आशा जी। बट आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट, क्योंकि एक गाना चला जाएगा अगर मैं मेरे एक्सपीरियंसेस की बात करूं। सो लेट्स गेट ऑन विद आशा जी, हु सैंग फॉर ऑल द हीरोइंस।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 127.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
4: It's December. Thand ko bolo goodbye.
5: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine aur 8 amazing Caribbean islands aapka intezar kar rahe hain. Prices from just £1,499 per person, twin share. Seats limited hai, to aaj hi book kijiye. Visit maharajatours.co.uk or call 07956154846. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
6: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
7: The wait is finally over.
8: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
7: Mirzapur is coming to the big screen.
9: Gaddi na to virasat se milti na siyasat se.
7: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
10: Agar Kaleen bhaiya hai wo king of Mirzapur.
7: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
11: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Adil ji. Dusra koi nahi khulega.
12: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
13: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
12: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
14: सिटी बॉन्ड ट्रैवल प्राउडली प्रेजेंट्स यात्रा टूर्स 2026।
15: डिस्कवर कैलाश मानसरोवर, चार धाम, अमरनाथ, श्रीलंका विद अयोध्या, अयोध्या विद काशी, द गोल्डन टेम्पल अमृतसर एंड मोर।
14: बुक बिफोर द 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
15: Also explore 2026 cruises
14: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
1: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.
16: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply... for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
17: LenFi means quicker and safe way to send money.
18: LenFi means low transaction fees and great exchange rates.
17: LenFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
18: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LenFi. Download the LEMFI mobile app today.
19: LenFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
1: London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein. 10:35 AM par DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: नमस्कार बाली जी, कैसे हो आप?
1: बस देखो, आज आशा भोसले जी को याद कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूं कि आप तो सबसे क्लोज थे आशा भोसले जी के साथ, सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ और कैसा रिलेशनशिप था?
0: बिल्कुल।
1: हाँ जी,
0: और आप, मुझे शायद सपना आया कि बाली जी अभी रेडियो पे होंगे, आशा जी के 93rd बर्थ एनिवर्सरी, क्या बोलते हैं ना, सेलिब्रेट कर रहे होंगे,
1: हाँ हाँ
0: और आपने सोचा और मैंने फोन किया।
1: मैं सच बोलता हूँ, ए सिक्स्थ सेंस है, बहुत अच्छा रहा आपने फोन किया और मेरी विश।
0: दिस इज कॉल्ड टेलीपति। एक होता है मेरा पति, दूसरा टेलीपति, मतलब से बोल रहे हैं। एनीवे, मजाक नहीं, अभी तो अच्छे मौके पे हम लोग बात कर रहे हैं,
1: जी
0: कोइंसिडेंस है।
1: जी
0: और क्या कहें, 93rd एनिवर्सरी,
1: जी
0: मतलब उनके जाने के बाद उनकी पहली बर्थ एनिवर्सरी, तो
1: जी
0: जाहिर है कि जितने भी उनके चाहने वाले हैं, फैंस हैं, सिंगर्स हैं, नहीं है,
1: जी
0: उनको भी मतलब हर पल, और जैसे आपने भी बहुत काम किया उनके साथ, और मैं बहुत लकी हूं कि 40 साल, 1986 से 2026 तक,
1: जी
0: तो बहुत मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझता हूं कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला स्टेज पे, स्टूडियोज में।
1: जी
0: और मैं तो इतना लकी समझता हूं कि बाली जी, आप और हम, कि द आशा भोसले, जिनको लोग एक झलक देखने को तड़पते हैं, तरसते हैं,
1: हाँ
0: वो लोग, वो बड़ी कलाकारा सरस्वती माता हमको जानती थी।
1: जी
0: वो हेलो बाली, कैसे हो? सुदेश, क्या कर रहा है? तेरी आवाज ऐसी क्या हो गई? क्या प्रॉब्लम है तेरे को? मतलब ऐसे एक ना एल्डरली फिगर, या सीधे कहो कि एक माँ की तरह
1: यस
0: हमसे बात करती थी।
1: यस
0: एंड वी वर सो फॉर्चुनेट
1: जी
0: कि हमने उनके साथ खड़े होके गाना गाया। मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा, उनके साथ ट्रेवल किया, उनके घर पे जाके कई बार खाना खाया है,
1: जी
0: तो वो सारी चीजें एक एक एक एक पल की याद आ रही हैं। और मैं तो क्या बताऊं, मुझे बेटा मानती थी। और
1: जी
0: अभी अभी ना अभी वही गाने जब मैं डुएट्स गाता हूँ ना अपने शो
1: हाँ
0: में,
1: जी हाँ जी
0: इंतहा हो गई, जाने जा,
1: हाँ
0: ये रातें, मौसम, पिया तू,
1: वाह
0: तो मुझे याद आता है, अरे कल तक तो मैं आशा जी के साथ गाता था।
1: ओह माय
0: तो
1: गॉड,
0: कोई कोई समझ नहीं सकता कि मैंने किशोरदा के साथ शोज किए हैं,
1: हाँ
0: कोरस दिया है,
1: हाँ
0: लेकिन आशा जी के साथ डुएट्स मैंने ये सारे, जो ना
1: हाँ
0: दम मारो दम में कोर, मतलब अब मैं जब कोई भी गाना गाता हूँ
1: हाँ
0: स्टेज
1: जी
0: पे या टीवी पे, तो
1: हाँ
0: मुझे वो पल याद आता है कि आशा जी कैसे मेरा हाथ पकड़ के डांस करती थी, तो कैसे देखती थी मुस्कुरा के कि शम्मी कपूर का आजा आजा, तो मैं मस्ती करता था, नखरे करता था,
1: ओ
0: और
1: माय
0: वो एनकरेज
1: गॉड,
0: करती थी।
1: ओ माय
0: और
1: गॉड,
0: आज हम सोचते हैं कि अरे ये वापस नहीं होगा, और क्या ये हमारे साथ हुआ, आशा
1: हुआ
0: जी के साथ, क्या मैंने गाया, मैंने क्या मैंने स्टेज पे गाया उनके साथ। और
1: एब्सोल्युटली
0: सबसे बड़ी बात, ये तो सब जानते कि उनके जैसा वर्सेटाइल कलाकार कोई नहीं था, लेकिन मैं यही कहता हूं कि आशा जी, नॉट ओनली आशा जी, सारे जो हमारे गुरु सिंगर्स है, लता जी,
1: हाँ
0: मोहम्मद
1: जी
0: रफी साहब, मुकेश जी, प्लस कल्याण जी, आनंद जी,
1: हाँ जी
0: एलपी, पंचम दा, बप्पी दा, मैं ये सोच रहा हूँ बार बार, बाली जी आप भी सोचते होंगे,
1: जी
0: ये लोग अगर ये भंडार म्यूजिक का नहीं बनाते तो हम लोग क्या करते स्टेज पे?
1: कुछ नहीं, सच में
0: मेरे
1: बताऊं।
0: गाने कितने, आपके गाने कितने, मेरे 5-6 हैं,
1: हाँ
0: आपके भी हैं, तो और मैं तो कहता हूँ जो स्टेज सिंगर्स हैं
1: हाँ जी
0: और हम जैसे कलाकार, हमारा घर चल रहा है क्योंकि इन लोगों ने इतना भंडार बना के चल रहा है
1: बहुत
0: आज भी। और वो सिर्फ ना इंस्पायर नहीं करेंगी,
1: जी
0: और आने वाले 100,000 साल तक हम जैसे म्यूजिशियंस का घर चलाएंगी वो, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लिए इतना प्योर, अपना हिंदुस्तानी,
1: जी
0: मतलब कोई डिसेंट काम करके गए हैं।
1: जी
0: तो जिन जितना उनको, आशा जी को हम थैंक्स कहें तो कम है। और जो नहीं भी गा रहे ना, उनके हर वक्त के, हर मूड के साथी रहे हैं आशा
1: जी
0: जी के गाने। तो जितना
1: हाँ
0: भी हम याद करेंगे,
1: हाँ
0: जिनका
1: जी
0: जितना उनको थैंक यू करेंगे,
1: हाँ जी
0: उतना कम है बाली जी। और हम और मैं तो ये बोलता हूँ ना, नॉर्मली लोग बोलते हैं ना, अरे आप गाते हो तो रफी साहब

0: आपकी याद आती है, आप गाते तो किशोर कुमार, तो मैं तो कहता हूं नहीं, किशोर दा, लता जी, आशा जी, मुकेश जी, रफी साहब, प्लीज कम बैक, हमारे बस की बात नहीं, हम दूर दूर तक आपके पास नहीं आ सकते, ये तो
1: जी
0: हम आपको
1: सही
0: सुन
1: बोले।
0: सुन के बड़े हुए हैं, और वो तो लोगों का ना, जनता का एहसान है कि वो लोग हमको सुनते हैं,
1: सच
0: क्योंकि वो
1: बोले।
0: गाने ही इतने हिट हिट हैं
1: हाँ
0: कि कोई भी गाए तो लोग आह निकलती है।
1: हाँ
0: जैसे एक छोटे से 2 मिनट ले रहा हूं आपका,
1: अरे प्लीज प्लीज।
0: जैसे एक एक बड़े कलाकार ने रफी साहब का गाना गाए और तालियां पड़ी, वंस मोर हुआ, तो वो थोड़ा सा अरे क्या बात है, मुझे वंस मोर मिला, बल्कि अंदर आया ग्रीन रूम में, तो प्यारे भाई ने बोला तो आपको क्या लगा ये तालियां आपके लिए थी या आपके लिए नहीं थी, रफी साहब के लिए थी। तो
1: ये बात
0: मतलब हम लोग किसी भी गलत फहमी में न रहे कि
1: हाँ
0: जब मेरे महबूब, अगर तालियां पड़ती हो वो मैं जानता हूं क्योंकि मैं होश में हूं, कि ये मेरे लिए नहीं, रफी साहब के लिए, एलपी के लिए है, तो समझ रहे ना। तो जब तक हम लोग ये इसका एहसास रखेंगे ना
1: हाँ
0: कि
1: जी
0: हम लोगों, क्योंकि देखो जैसे माता पिता की कोई जगह नहीं ले सकता, भगवान की कोई जगह नहीं ले सकता,
1: जी
0: उसी तरह ये जो बड़े दिग्गज हमारे गुरु, और ना
1: हाँ
0: ये मैं तो समझता हूं पहले जी, ये इंसान थे ही नहीं, ये अवतार थे सारे,
1: ये सब अवतार थे सच।
0: अब अपना अपना रोल करके चले गए आगे के हजारों साल तक। मैं नए बच्चों को, अगर आपके पास गुरुजी नहीं है, आप क्लासिकल नहीं सीखते, तो सिर्फ इन 5 6 10 जो दिग्गज है, मन्ना दा, ये
1: हाँ
0: उनको बस सुनते रहो सुनते रहो, पहले कानसेन बनो फिर तानसेन बनो।
1: ये
0: तो
1: बात
0: और मैं तो, मुझे सिर्फ गाना नहीं दिया उन्होंने, तो मैं तो वही गा रहा था 80 के दशक में,
1: जी
0: लेकिन मुझे लोग कॉमेडियन समझते थे, मिमिक्री आर्टिस्ट, लेकिन
1: जी
0: जब आशा जी के साथ गाने लगे तो लोग बोले अरे यार ये तो सिंगर भी है, क्योंकि आशा भोसले गवा रही है, आप
1: हाँ
0: समझ रहे।
1: बहुत अच्छी बात कही
0: और
1: आपने।
0: बड़ी बड़ी बड़ी बात कह रहा हूं, मैं जब शुरू किया 80s में, 60 रुपीज पर शो मुझे मिलते थे,
1: ओ माय गॉड
0: आशा जी के शो करते ही वो कैसे 6,000, उसके कैसे 6 लाख, उसके कैसे 10 लाख 20 लाख बने मुझे पता। अच्छा गाना मैं वही गा रहा हूँ,
1: क्या
0: ऐसा नहीं कि
1: बात
0: मैं
1: है।
0: बहुत बहुत बहुत बहुत 30 मार खां बन गया या तानसेन बन गया, गाना मैं वही गा रहा हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज आई स्टूड बिसाइड आशा जी एंड शी अलाउड मी टू सिंग डुएट्स विद हर, लोग बोले यार ये तो सिंगर है, क्योंकि आशा भोसले इसको लेके जा रही है,
1: बहुत
0: आप
1: बड़ी
0: समझ
1: बात
0: रहे।
1: की आपने
0: तो
1: सच
0: कौन किस रूप में कब किसके काम आ जाए,
1: जी।
0: और मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने जो सर पे अपने, आपके मेरे सर पे हाथ रखा,
1: जी
0: तो हम इनका कर्जा क्या कहते हैं ना, बस थैंक यू गॉड कि हमारे, एक तो मैं कहूंगा कि हमारे देश में आशा जी पैदा हुई, और सबसे बड़ी बात कि हम मिले हैं उस आशा भोसले को।
1: जी
0: आपको और मुझे कितने फोन आते, सुधीर जी रिहर्सल में प्लीज एक बार ले जाइए, सिर्फ
1: हाँ
0: उनके पैर छूने, एक छू लो,
1: हाँ हाँ
0: और हम लोग ऐसे हैं कि आशा, सुधीर क्या कर रहे हैं, घर पे आ रही है, चार चार पांच पांच घंटे आ रही है, और एक बार तो उन्होंने आई 7 बजे 11:30 बजे तक, और मैं सोच रहा हूँ भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, द आशा भोसले, शी इज जस्ट कमिंग एंड ये खाओ ओके, चाय पियेंगे दर पर, मतलब
1: कैन
0: जो
1: यू
0: बनाया हर चीज
1: बिलीव
0: वो,
1: दैट? ओ माई
0: मतलब
1: गॉड
0: वो जाने के बाद ना, हम, मैं, हेमा पत्नी मेरी और श्रुति सिद्धांत, हम लोग ना ब्लैंक हो गए थे, हमारा क्या कहते हैं ना, शरीर ठंडा पड़ गया, कि
1: जी
0: आशा भोसले आके गई और नॉर्मल बात करके गई,
1: ओ माई गॉड
0: मतलब ये ऐसा ऐसा होता है जो हमने मांगा भी नहीं था। तो भगवान, तो कितनी बड़ी बात है ना। तो
1: बहुत
0: और तब
1: बड़ी
0: से
1: बात है।
0: ना बाली जी,
1: हाँ
0: तब से बाली जी मैंने ना कंप्लेन करना मांगना बंद कर दिया,
1: ऐसा
0: कि हाँ कि भगवान, मैं पहले, मुझे भी गुस्सा आता था ना, अरे इनसे क्यों गवा रहे, मैं भी तो अच्छा सिंगर हूँ, वो जो जवानी का जोश था ना, जब से आशा जी आई लाइफ में,
1: हाँ
0: बोले
1: जी
0: जो मेरी औकात नहीं, और आशा भोसले मुझे गाने के लिए ले जाती। तो और एक बड़ी बात कहूंगा, मैं आशा जी को हर शो में पूछता था, आशा जी आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर्स हैं, क्लासिकल सीखे, आप मुझे क्यों ले जाती हैं,
1: हाँ
0: मुझे आज भी समझता नहीं, सुर लगा नहीं लगा, तो सिर्फ मुस्कुराती थी। फिर
1: ओ माय गॉड
0: इसराइल में हम लोग गए थे, हम लोग एक जगह गए थे, तो मैंने मैंने आज मुझे पता, बोले तू गाता अच्छा है, तू आदमी अच्छा है,
1: वाह वाह
0: तो बोले तू ना, और एक एक और कहना चाहूंगा
1: प्लीज
0: बड़े प्यार से
1: प्लीज,
0: क्योंकि कुछ कुछ महीने ना मैं नहीं था उनके साथ
1: जी,
0: कोई और प्लेबैक सिंगर थे, तो पता है कुछ वजह से हुआ ऐसा, मैं थोड़ा सा दूर हो गया था उनसे।
1: ओ।
0: और मैंने उनको फोन किया, आशा जी मैं काम के लिए नहीं फोन कर रहा हूँ, आपके शो के लिए नहीं, लेकिन अगर कोई गलतफहमी है तो प्लीज मुझे बताइए, मेरे खून में वो नहीं है, बेईमानी नहीं है। तो और आपने ऑर्केस्ट्रा से उठा के मुझे सीधे पंचमदा के लहजे का मुझे प्लेबैक सिंगर बन गया, आप सोचना भी नहीं कि मैंने कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से मैं आपसे दूर हूं, और मैं पैसे और प्रोग्राम के लिए नहीं फोन कर रहा हूं, सिर्फ जो भी हो ना कोई गलतफहमी तो प्लीज आज उसको बोल डाली मुझे। तो वो बोले कुछ नहीं सुदेश, और फिर एक महीने बाद उन्होंने क्या बोला मानू मुझे,
1: क्या?
0: सुदेश तू नहीं है ना, अब मैं सिर्फ सोलो गा के ग्रीन रूम में जाके बैठती हूँ, मैं डुएट गाना बंद कर दिया।
1: ओह माय गॉड, आपने मुझे रुला दिया सच्ची।
0: हाँ,
1: ये बात
0: एक्चुअली तो उन्होंने बोला मुझे, सुदेश तू नहीं है ना मराठी में, मैं सिर्फ सोलो गाती हूँ और गुपचाप गपचुप जाके मेरे चुपचाप ग्रीन रूम में बैठ जाती हूँ, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता तेरे बगैर।
1: ओह माय गॉड।
0: और फिर भगवान ने उनकी मेरी बात सुन ली, कुछ ऐसा मौका आया कि अचानक कुछ प्रॉब्लम हुई, सुदेश कल तू 7 बजे की फ्लाइट पकड़ के आ जा, मैं बहुत परेशान हूँ तू आ जा। और मैं चला गया, और उसके बाद उन्होंने सबसे कहा पूरे ग्रुप को, इसके बाद मुझे कोई अगर किसी सिंगर का नाम रिकमेंड किया तो खबरदार मैं सुदेश के अलावा शो नहीं करूंगी। सर मैं बाली जी और बता रहा हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनके गुजरने से एक महीने पहले गया था, मैं से हर 2-3 महीने में जाके जस्ट आशीर्वाद लेने के। तो जैसे मैं एंटर किया ना उनके गुजरने के एक महीने पहले, तो बोले सुदेश 8 तारीख लिख ले, 8 सितंबर मेरा बर्थडे है, हम लोग बैंड्रा में शो करना, तू लिख ले। और मैंने बोला बिल्कुल हाँ। और
1: फिर
0: मैं निकला ना तो और आखिरी वर्ड उनके, मैं निकला ना सुदेश जा रहा है, हाँ एक बात सुन, पूरे वर्ल्ड में तू एक है, मेरे को ऐसा भरोसा, मैं रात को 2 बजे भी फोन करूंगी ना तो मुझे मालूम है तू आएगा भाग के मेरे लिए।
1: थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सुदेश जी, इस बात पे मैं तालियां बजा रहा हूँ।
0: अरे नहीं मतलब मैंने अभी तक माना नहीं कि आशा जी नहीं है, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है।
1: थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सुदेश जी,
0: गॉड ब्लेस यू, एंड आपका लाइका रेडियो और बाली जी,
1: हाँ जी,
0: आपका ये शो और आपकी फैन फॉलोइंग, आपकी आपके इस लाइका रेडियो की पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में बढ़े, गॉड ब्लेस।
1: थैंक यू सुदेश जी, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू, बाय बाय, आई कॉल यू बैक, थैंक यू।
2: The top stories this hour. The Foreign Secretary has announced a trade ban with Israeli settlements in the occupied West Bank. Ed Miliband says settler terrorists are carrying out ethnic cleansing of Palestinians. But speaking in the Commons, he says the argument isn't with the people of Israel.
3: Our argument is with the conduct of its government. And I also want to say emphatically to people in Britain and indeed across the world, holding British Jews responsible for the actions of the Israeli government is anti-Semitism, plain and simple.
2: Israel's president's called the trade embargo a grave miscalculation. The settlements are illegal under international law, although Israel disputes that. The Duke and Duchess of Sussex say they're surprised by the King's letter, making it clear the couple will remain non-working royals. The decision's been made following requests for guidance after Harry and Meghan returned to the UK last month. It's a restating of the late Queen's position on the matter. Our royal correspondent Laura Bundock says despite this, the move is still unusual.
4: The timing's interesting in all of this, and I think Buckingham Palace and the Sussexes, there seem to have been a softening in relations there, but it feels that once again we're sort of seeing the battle lines being drawn up, particularly as we sort of count down to when we will be seeing Harry shortly.
2: A Foreign Office minister has told MPs there's no doubt over Britain's sovereignty of the Falklands. Argentina's president recently restated his country's claim to the islands. Thieves have stolen 4 paintings from the Renoir Museum on the French Riviera. 2 were dropped, but the artworks are still worth around £8 million. The number of babies born in Scotland has fallen to another record low. The birth rate's now 7.7 per thousand people, down from 8.4 a decade ago. And Sir Tom Jones says that he's been fired as a judge on The Voice UK. The 86-year-old served as an on-off coach on the show since its 2012 debut. He claims he's been told it's down to a financial difficulty with insurance. From Sky News, I'm Imani Rana.
5: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: And looking at the temperatures, 17 Celsius maximum temperatures in London and 18 Celsius maximum temperatures in the Midlands. And this afternoon we'll see rain pushing eastwards and it will turn drier later in the day with sunshine developing. And in the Midlands, you would see this afternoon turn breezy with patches of clouds, sunny spells and a few scattered showers.
5: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. LYCA. This is Leica. Bali Brambat.
1: That was so fabulous of Sudesh Bhosleji to come and tell us about his experiences with Ashaji. And it got me teary. It really got me teary. Let's listen to more heroines for which Ashaji sang.
5: Leica Radio.
6: Leica Radio.
5: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Seven stations, one podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network.
1: We're doing a tribute of Asha Bhosleji and the heroines for whom she sang. This is Urmila Matondkar and then Kajol.

0: ओपी नैयर का संगीत और कमर जलालाबादी की लिरिक्स, एंड फिल्म है हावड़ा ब्रिज, एंड आशा भोसले जी सैंग फॉर मधुबाला।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
1: This is Leica Radio across the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Extra podcast update.
0: Podcast episode number 32, titled Muhammad Vakil Special, hosted by Ravi Sharma. In this special episode, Ravi Sharma sits down with renowned artist Muhammad Vakil to explore the story behind his musical journey. Leica Extra Podcast, available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. This is Leica Radio.
4: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
5: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का Perfect Destination. Kanish Idols अब Available हैं सभी Falcon Stores पर. Onam संध्या के लिए Pre-Bookings भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon Snacks 300 grams की Full Range सिर्फ £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds सिर्फ £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg सिर्फ £29.96. S Motiram Namkeen अब सिर्फ 99 से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE54UN. लेस्टर ना लिटिल गरबा स्टार्स तैयार थे जाओ. KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशन प्राउडली प्रेजेंट्स किड्स गरबा 2026 विद लाइव फ्रॉम इंडिया. सैटरडे 17 अक्टूबर बपोरे 1-4 एट अवंती फील्ड स्कूल लेस्टर. 1-10 वर्ष ना किड्स माटे एंट्री जस्ट £5. टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट सोर्स और कॉल पीजल 07957477330. मस्ती म्यूजिक एंड फुल ऑन गरबा फन. रेडियो पार्टनर Leica Radio.
6: Birmingham, get ready as Surinderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
7: The wait is finally over.
8: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
7: Mirzapur is coming to the big screen.
9: Gaddi na to virasat se milti na siyasat.
7: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
10: Abhi Kaleen bhaiya hai wo king of Mirzapur.
7: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
11: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
12: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
13: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक Every day grand.
14: Big Boss में इस बार मिलेगा प्रदान और एक्स्ट्रा जीवन दान तब हस्तों में जान.
15: Big Boss Season 20 every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss House exclusively on Jio Hotstar.
16: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
17: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

एंड वी कम टू प्यार का सागर। संगीत है रवि का और प्रेम धवन की लिरिक्स, लेकिन हीरोइन मीना कुमारी। आशा भोसले जी सिंगिंग फॉर मीना कुमारी।

0: आशा भोसले सिंगिंग फॉर रेखा. नेक्स्ट सॉन्ग फॉर परवीन बाबू.
1: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स.
0: Like a Gold pays tribute to Asha Bhosle ji on her 93rd birth anniversary. Heroines for whom Asha Bhosle ji sang this one for Parveen Babi.

0: अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक मन्ना दा। मन्ना डे जी ने आशा भोसले जी के साथ ये गाना गाया श्री 420 में, और हीरोइन राज कपूर तो हीरो थे ही, लेकिन हीरोइन नादिरा। सो देयर यू आर, वी आर कवरिंग हीरोइंस एज वेल ऑन आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits.
0: Yes, Rana-san, Laika Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Rana-san. Details at laikaradio.com. And Punjabi legend, mega balle balle, Punjabi legend Lakhvinder Wadali. Friday, 16th of October at Crystal Grand, Slough. And Sunday, 18th of October at ICC, Birmingham.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। कनिष आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू। और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11, 11.
6: Call the Danube Properties London office today on 02 03.

0: as Surrenderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
2: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
3: The wait is finally over.
4: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
3: Mirzapur is coming to the big screen.
5: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
3: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
6: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
3: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
7: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
8: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
9: No more worries for me or you.
10: Southall Travel, at all protected.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक एवरीडे ग्रैंड.
12: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: इग्नोर मी होते हैं दो मोती
1: एक साथ धड़के हैं दो दिल
0: दिल रुबा दिल पे तू ये

0: Local grocery stores. Caratino Better Ghee.
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
0: Borderless World presents Atif Aslam live in concert.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound
0: on Friday, 11 September at the AO Arena, Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
1: Zembi Productions, supported by Rianne's Music.
0: Official radio partner, Laika Radio, Greater Manchester.
2: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
3: Laika Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire. With the UK's next Radio Wally's Roller Coaster. With Radio Wally. On Laika Radio Midlands. Raj Badden.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
3: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.

0: Disha Basmati Rice, available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill, a desi tadka is total risk, hai na?
2: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
1: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods Potato Chips now.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
4: ब्रांड्स दैट यूज radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
5: A true Radio Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Leica.

0: such a beautiful track. और जिंदगी में ऐसा चेहरा तो होना ही चाहिए ना जिसको देख के ही सुकून आता है. और trust me, मेरे शाम में अगर अनीसा नासिर का चेहरा ना दिखे ना तो सुकून नहीं आता है. सोचती रहती हूँ हाय हाय मैं क्या करूँगी, किसको सताऊंगी, किसको परेशान करूंगी. लेकिन वो मेरा चेहरा है जिसको देख के ही मुझे सुकून आता है. एंड आई रियली होप कि उसके दिमाग में भी यही कॉपी पेस्ट डायलॉग चल रहा है. बट आई एम प्रीटी श्योर सर से वो ना बोलेगी, दिल से वो हाँ ही हाँ बोलेगी. इट इज अ लेजी लाउंज, लेट्स वाइंड डाउन, लेट्स रिलैक्स, लेट्स गेट रेडी फॉर द नाइट अहेड. कीप दोस ब्यूटीफुल मैसेजेस रोलिंग.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So £1 British sterling tonight is giving you up to 127.9 Indian rupees. But remember, transfers must be online, in store or via the app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So £1 in British sterling tonight is giving you up to 128.43 Indian rupees, 375.71 Pakistani rupees, 445.15 Sri Lankan rupees, 166.39 Bangladeshi takas, 89 Afghan afghanis and 1.35 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Radio Wally's Lazy Lounge.
0: This track has been in my head all day. Lekin maine beimani nahi ki. Wafadari nibhai. I'm sharing it with you, so turn up the volume.
3: Mera

0: on Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhvinder Vidali and his live band.
1: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250376.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरी Day grand.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
4: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02030773633 नाउ एट द बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज What's your travel mantra? Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
0: Raj Patton. Hey up, it's me, Raj Patton. Don't forget to catch me every weekday afternoon between 4 and 7 p.m. with Drive. All the usual grand musty, entertainment, business, sports, all the latest news headlines. Fused with the latest Bollywood blockbusters and, of course, the Punjabi hits. That's me, Raj Patton, on Drive.
5: Leica Radio. The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.

0: in.
1: Leica Radio.
2: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11,
3: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
0: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
6: We're finally going home for the wedding.
7: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
7: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
7: Exactly. Flat rate.

0: ये है लाइका रेडियो।
1: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place. 11,
2: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
4: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
5: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410। साउथहॉल Auto protected.
6: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
7: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.